तू बेअंत को विरला जाने को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अयारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरी बहु रंगी सब तेरे निया तू बेन ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सभी मुन इंद्र महाशिव जो करी तू बेन अत ऊंचा ताका दरबारा

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल वो फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हन। एक, नाम बिना नर्क कहीं न लेख है, नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ये शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसर तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ये भी आख्या है,

नाम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर्स नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किवें प्राप्त करेगा। नंबर वन, देही नु सो, देही नु काड़, इस नु डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत करदी है। तो बाबा फरीद जी ने पूछा, महाराज आप जी ने की कीता, क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदत, इस दे टेस्ट, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, तो इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते हैं इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उना नालों सेपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नू सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ, अते जो विचार है उना दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट टू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू एंड देन हाउ द सेकंड थॉट इज फॉलोड बाय। कैन दे ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनू देख सकते हैं। ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है, असी अलग चेयर ते बैठ के सिर्फ उसनू वाच कर सकते। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उस उन्हां नूं देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देयर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते अस्वारी करो, भाव के उन्हां नूं इनडिफरेंट होके, उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप नूं थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार अस्वारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच दें। सिर्फ उन्होंने देखना है। अपने विचार अस्वारी कीजिए का मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्होंने देखो, तुसी कोशिश करके करन दी देखो, कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नू करना है। अपने विचार अस्वारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनू देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नू देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया। बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है, की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बीइंग। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बीइंग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे
ਉਤਨਾ ਉਤਨੇ ਉਹ ਗੈਪਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੈਪਸ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਰ, ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਅਚਾਨਕ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ,

जितना जितना इस अभ्यास नु बधाओगे, जितना जितना इस अभ्यास नु बधाओगे, उतना उतना मन जो है अंडर कंट्रोल आंदा जाएगा, थॉट्स अंडर कंट्रोल आ जाएंगे, थॉट्स कट जाएंगे। थॉट्स का ही रौला है और थॉट्स दी डिस्टरबेंस है। जदों वो हट जाएगी तो मन दे अंदर एक शांति होएगी, एक टिकाव होएगा, एक खालीपन होएगा। उस दे विच आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता मन तो जो डीपर लेवल है आत्मा का, उस दियां ग्लिम्स आनी शुरू हो जाएगियां, उस दी दीदार होने शुरू हो जाएंगे। सो महाराज जी मन दे मुतलक सानू इस तरह समझांदे हैं, जपो तो एको नाम, नाम जपना है, पर नाम जपन दे वास्ते सब तो पहला भांडा तैयार करना है जो है बॉडी, और उस तो बाद समझ लो कि ये बहुत ही सूक्ष्म पढ़ाई है जिस दे वास्ते तुहाडी सुरती का टिकाओ बड़ा लाजमी है। पर अगर तुहाडे आले दुआले कोई शोर मचा रहा होवे, कोई डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा होवे, तो तुसी किस तरह पढ़ सकते हो? पढ़न दे वास्ते तुहानू क्वाइटनेस चाहिदी है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिदी। पर ये रब्बी विद्या है, स्पिरिचुअल एजुकेशन है, ये अकाल पुरख वाहिगुरु नूं मिलन दी तालीम है। और उत्थे मन ने अपना शोर मचाया होया है, मन दौड़ा फिरदा है। जिस तरह बच्चियां नूं जदों रौला पांदे हन, सानू कहना पैंदा ना टिक के बैठ जाओ, असीं बड़ा जरूरी काम करदे हां, इस तरह मन नूं कहना पैंदा है कि ऐ मन बच्चे टिक के बैठ जा, इसनूं टिकाणा पैंदा है। महाराज जी ने मन नूं बच्चा आख्या है। सो सारे साडे अपने अंदर असीं बच्चे ही हां, क्योंकि जे मन साडे अंदर है तो मन नूं बच्चा आखदे हां। काया नगर एक बालक वसया, काया नगर एक बालक वसया, खिन पल थिर ना रहाई। एक काया नगरी दे अंदर जड़ा मन रूपी बालक है ना, एक पल दे वास्ते भी टिक के नहीं बैंदा। जब ए एक पल दे वास्ते भी टिक के नहीं बैंदा, इतनी डिस्टरबेंस क्रिएट करके रखता है अंदर, तो सुरती किमें टिक जाए? सुरती काल पुरख वाहिगुरु नूं अनुभव किमें कर ले? उस बाणी दे विच अभ्यास दसदे हन कि मन रूपी बालक नूं आखो बैठ, उस उत्ते ध्यान दे के रखो, उस दे उत्ते सवार हो जाओ, कि सारे दिन दे विच एक पल भी ऐसा ना होवे जदों कि तुहाडा तुहाडा ध्यान अपने मन वल ना होवे। नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, पर ए मन नूं जो है इस नूं एक पल दे वास्ते भी अपनी अखां तो अपने ध्यान तो ओले नहीं करना, इसकी आदत बनानी है। आदत बनाते हैं दो चार महीनों के, छे महीनों च यह अभ्यास बहुत पक जाता है, बहुत पक जाता है जो रेगुलरली इस नूं करनगे। उदों ही आखना है कहां चलो मन रहो करे, क्योंकि यू विल एक्सपीरियंस एक थॉट मेरे अंदर चल रहा है, एंड देयर इज नो नीड फॉर दिस थॉट। अपने मन नूं तुसीं कहोगे भी क्यों, की गल है? उथे तुसी उस मन की जो एनर्जी है उस दे लिए ऑब्सटैकल खड़ा कर दिता। यू हैव बिकम द ऑब्सटैकल फॉर द माइंड, बिकॉज यू आर नाउ वाचिंग इट एंड ब्रेकिंग इट। तुहाडा देखना ही माइंड नू जो है वह खत्म करना शुरू कर देगा, सीज होना शुरू कर देगा। अते उस दे अंदर एक थॉट तो बाद कितनी कितनी देर तक दूसरा थॉट नहीं आएगा। जिन्होंने यह अभ्यास किया उन्होंने पता है, एक थॉट नू ओ वाच कर रहे हैं और उसनू उत्थे ही उन्होंने खत्म कर दिता है, देन उस तो बाद जो दूसरा थॉट है कितनी देर तक दूसरा थॉट नहीं आएगा, वो टोटल साइलेंस का टाइम होंदा है अंदर। और उस साइलेंस दे विच स्टिल जो एक्सपीरियंस करने वाली जो साड़ी कॉन्शियसनेस है, फिर असी उसनू एक्सपीरियंस करते हैं। सो देन द एक्सपीरियंसर इज द वन विच इज एक्सपीरियंस्ड। सो दूसरा अभ्यास है मंद, और तीसरा अभ्यास है गुरु बाबा जी आखते हैं सुरती का, क्योंकि अगर दो इंसान गलबात कर रहे हैं, एक दी सुरत उत्थे नहीं है, ध्यान उत्थे नहीं है, अटेंशन उत्थे नहीं है, तो एक बंदा कुछ कही जाता है पर एक बंदा सुनदा सुनदा भी उसनू कुछ नहीं पता चलता। बाद अगर उसनू दूसरा इंसान पूछता है कि मैं की क्या, तो वह बड़ा एम्बेरस हुंदा है कि मैनू तो पता ही नहीं चलिया कि की क्या है, क्योंकि सुरती उत्थे प्रेजेंट

107 संगत, अज जदों आप जी वापस जाओ घरां नूं तो रोजाना एक छोटी जी डायरी बना लेनी, 10 दिन जितने भी कीर्तन होणगे दसां कीर्तनां दे विच हर रोजाना एक नवा मैसेज जो है, सुनेहा जो है, लैसन जो है वह सानू मिलिया करेगा, उसनू भुल ना जाना। अज ये दिल दे विच इस गल नूं उतार के जाओ कि गुरु महाराज जी ये आखदे हन अपने मन की मत नूं त्याग दो, बिल्कुल त्याग दो, खाली हो जाओ। हुण सुते गुरबाणी दे

वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हेरा रोटी कार नहीं गला कटावे कौन, हेरा रोटी कहने मां साली रोटी ने चला मुरदार ले आओ उन्हें छिलो उन्हें बनाओ घर का जाता कर जो है वो मेला करो। फिर जिन्होंने आज खामा जो कदे सामने नहीं खाएंगे कुदरत ऐसा निगम नहीं है, जो कर्म करोगे उसका फल उसे तरह भुगतना पाएगा। क्योंकि हीरा रोटी कारण है स्वाद के बदले मैं किसी जीव का लिया के गला कट दिना हाँ तो उस कर्म का कोई नतीजा नहीं निकलना, उस कर्म का भी तो नतीजा निकलना है। क्योंकि कौन निकल गए स्वाद के बदले अपना गला कटवावे, कबीर साहब का श्लोक है हीरा रोटी कारण गला कटावे कौन। क्योंकि मेरी ऐस इन्नी स्वाद की गल बदले मास, हीरा रोटी का मतलब होंगे मास वाली रोटी, कहते मांस वाली रोटी के बदले इन्नी गल बदले कौन अपना सियाणा बंदा गला कटाउंदा है। कहते मेरे लिए सादी सिंपल खिचड़ी ही अमृत वर्गी है, इतों भाव है सादा खाओ सादा जीवन जियो। यह है गुरमत की सिक्ख्या, गुरमत की टीचिंग। फरीद साहब बाणी चख दिन फरीदा बुरे का भला कर गुस्सा मन ना हंडाए, जिहड़ा पहले ही बुरा है जिहड़ा पहले ही बुरा है उसको होर बुरा बनाना है, उसका बुरा करके तुसीं होर बुरा बना दो। बुरा होण दे नाल ओ अपनी आत्मा का नुकसान कर रहा, अपने जीवन का नुकसान कर रहा, अपनी मत का नुकसान कर रहा, अपने जीवन को तबाह कर रहा बुरा होण करके। होर की बुरा उसका करना है, होर उसका बुरा की करना है। अगर होर तुसीं उसका बुरा करन लग पे तो फिर उस नाल भी ज्यादा बुरे हो गए। फरीदा बुरे का भला कर गुस्सा मन ना हंडाए, हुण ए बहुत मुश्किल गल है गुस्सा मन ना हंडाए। कौन नहीं चाहता कि मैंने गुस्सा ना आए, पर गुस्सा सानू सबना नहीं आ जाता। ये है गुरमत की तालीम, गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगे पल्ले सब कुछ पाए। क्योंकि अगर तू इन्हीं की गल्लां कर लें तो तू देही दे अनेकां रोगों तो बच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रोग सिर्फ पैदा ही गुस्से करके होंगे हैं, पैदा ही इमोशनल प्रॉब्लम करके होंगे हैं। तो शास्त्र जी अगर आप जी के सामने मैं दो किस्म की मत अलग अलग करके रखी है, मन भी मत जी सामने इधरों उधरों मिली है अते असी उसमें मत समझी बैठे हैं, अपने आप में अकल वाले अते मत वाले समझी बैठे हैं। कदे सवाल नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया, शक नहीं की, कदे ये सोचा नहीं कि मत कितों लई दी है या वैसे ही कितों आ गई है। नहीं, मत सानू आई नहीं, असी वड्डे जरूर हो गए हैं। मत सानू आई नहीं, असी मत वाले होण दा भरम जरूर करन लग पए हैं। मत सिर्फ इको ही ढंग दे नाल आंदी है, गुरु की मत तू ले आने सब बिना मौजूद देता। जितनी देर तक गुरु तो असी मत नहीं लेंगे फिर वो इंसान अपनी जिंदगी दा हर बोल हर कर्म हर सोच ओ सोचे ओ करे ओ बोले जो गुरु की मत के नाल बिल्कुल मिलती हो, जो गुरु की मत के विचों हो, कह सके आ मैं जो बोल रहा ये मेरे बाबा जी के वचन हैं उन्होंने जो बोल रहा ये मेरे अपने नहीं हैं। मैं मस्कत एक दफा कीर्तन पर गया, उस कीर्तन के बाद एक सज्जन कह लगे भाई साहब मैं आप जी के नाल एग्री नहीं करता, डिस एग्री करता। वैसे भी जितों तक मैं याद है कीर्तन के दौरान मैं एक लफज भी अपने को नहीं किया, जो कुछ अपने लफ्जों किया उसमें गुरबाणी दंक्तियों के नाल कोशिश। पहला मेरे ध्यान गुरबाणी की पंक्ति होंगी, असल में कोई गल आखना है तो सारी तो गुरबाणी ही बोली गई है। तो जो आप जी डिस एग्री करते हो तो बाणी नाल करते हो, मेरे नाल नहीं करते, क्योंकि मेरे पास तो मत है ही नहीं, मेरे पास अपनी कोई सियाणत नहीं है, कोई मत नहीं है, मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं है। जो भी आखता हाँ वो गुरु बाबा जी की पवित्र पावन बाणी के विचों आखदा हाँ, तो वह गुरु बाबा जी की मत है। आओ अपने जीवन अपने मत को त्यागीए और गुरु की मत को लियाइए। गुरु की मत को लियाण के नाल जीवन स्वाद आता है और अपनी मत के नाल जीवन के फिक्कापन आता है। वो मैं पंक्ति कह के समाप्त कर लगा हाँ। कहते हैं लाले गोले मत खरी,

गुरु दा लाला गोला दास है, सेवक है, उसकी मत से है सोने वर्गी खरी। क्योंकि गुरु की मत नीची, नीची का मतलब बहुत अच्छी, क्योंकि उसके पास गुरु की बहुत अच्छी मत है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लाले गोले मत खरी, गुरु की मत नीची, साची सुत सुहावनी। उस गुरु के दास की सुरती जड़ी है बहुत सुहावनी है, बहुत टिकी हुई होगी, होगी मनमुख मत टिकी। तो जरा मनमुख है उसकी मत टिकी होगी, अच्छा जिसे मत टिकी है उसे सारा ही जीवन सिक्का होगा, जीवन का हर एस्पेक्ट जो है वो सिक्का होगा, देश लक्ष होगा, देश ज्यादा होगा। उनकी किस्मत लक्ष्मी हाले मेरी पूरी जो है वो जब तक की थकावट भी नहीं उतरी, पर अगले कृष्णा देव आप जी की सेवा जो है वो होर भी गुरु बाबा जी अपने आशीर्वाद दें तो उसके नाल की जा सकेगी। समय से रोजाना शाम के दीवान चाणा इसे तरह इसे विचार भी जो है लड़ी चलती रहेगी। तो अभी इन्होंने दसा दिनों के बहुत सारा गुरु बाबा जी की मत का जो खजाना है वो एकत्र करना है। आपको अपने नोट्स बनाया करो, जाके आप इस दूसरे के नाल इस विचार की सांझ पाया करो, ताकि असं कट्ठे रल के ग्रो हो सकी। आस्ट्रेलिया के दसवें कीर्तन जो जो लगे हैं ये साड़ी एक किस्म की इनवैसटमेंट हो गए कि इन्होंने दसा दिनों के असं कुछ प्राप्त किया है। यही कुछ समा प्यार संगाओ।

0: पीतर जोरा बसत है सच उतारी पछानो
1: छोड़ो दुनी
0: नौ प्रवाती शब्द आये छोड़ो दुनी परिता छोड़ो दुनी परिता ए मन प्यार।

0: परयो रामदास
1: हर जियो नाम परयो रामदास
0: हर जियो नाम परयो राम दीन दयाल कृपाल सुख सागर
2: सर्व
0: सर्व कटा
2: पर पूरी रे
0: एकत सुनत सदा है संगे
1: एकत सुनत सदा है संगे
0: मूर्ख जाग्या दूरी ने
1: हर बे अंत हो मित कर बरनो
0: क्या जानो
1: हो कैसो रे
0: क्या जानो
1: हो कैसो रे।

0: जो बास बस तंगे मुकुरमा है जैसे छाय तैसे गी हर बसे नरंतर कटकी फोटो पाई बाहर भीतर एक
1: जान
0: एक गुर ज्ञान बताई जन नानक गुर आपा जी ने
1: जन नानक गुर आपा जी ने
0: मिटे न पलम की काई मैं मूर्ख जान

0: अरबी तुर्की पारसी हो कहू पहल विपस्त विशेष करती कहू देश
1: कहू राज विद्या।

जे असी उस सवाल नू बदली करना चाहिए ते असी बदली करन दे समर्थ नहीं है, असी नहीं कर सकते। पत्थर दा सुभाव जन्मजात तो कठोरता है।

ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਦੀ ਵੀ ਐਨਕ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ
एकदम सारा सिलेंडर टूट गया है, जा रहे हैं जल्दी ठीक नहीं थी, बस एक सफर कर रहे हैं। गर्मी में इतनी सर सर्दी और खास गर्मी में एक यंग मैन नौजवान लड़का मेरी सीट में रात बैठा हुआ है, देखे बड़ा सुंदर नौजवान है। मैं पूछा काका तेरी सेहत तो बड़ी चंगी है पर तेरी अखा खराब हो गई है, हर साल जो मैंने खिलाई देता है। अरे कह लगा भाई जी ये अखा खराब नहीं हुई, मैं क्या तेरे ऐसे क्यों लाई है। कह लगा न्यू लाइट नहीं रहने गए आपको श्री वस्तु, मैं क्या भावे अखा की लाइट मुक जाए पर न्यू लाइट का जरूर जारी नहीं है। इनकी कहने पर सारी अखा डॉक्टर को लग गई, बाबा जी कहें सारी से तरह तंदुर मार्ग के व्यापार भी एनका लग गई हैं। इस मालक ने व्यापार में भी एनक लग गई हैं, कोई पुत्र भी एनक लगा वास्ते आ जाता, कोई माया भी है सरदा जी माया चाहिए मिल जाती, कोई बड़ी चीज नहीं। इतना बड़ा जाता है फिर में चीज चीज को राज पार ब्रह्म गरीब कोई मान मटियाई भी एनक लगाने वास्ते आ जाता, कोई मकान भी एनक लगाने वास्ते आ जाता है। पर बाबा जी कह रहे सन कोई गुरु नानक में दर्शन करने वास्ते एनक लगाने वास्ते आ जाता। बाबा जी महाराज कह रहे सन लोग दुनियावी एनक लगाने वास्ते सारी दुनिया आती है पर सन गुरु नानक में दर्शन करने वाली है भी कोई निर्भर कोई हिरला के रास्ते पाओ से अब

से आवाज पकड़े उन्होंने आवाज जब कभी सारे उन्होंने बच्चे सारे धर्म तुम्हारी भाई पक्ष तुम्हारी रात है मेरा वाली रात है और मेरी सास प्यार ना सारी धर्म का राज है।

Pedro Meta Caludia, Raimunda, the Prince of Karma, Akalu, should I go in there and you run to this hole? Cut out of your mirror, my hero. It never did hold it here. Kalu, who was that guy? मेरी अरदास नहीं सुनता मेरा मालिक, क्योंकि मैं पापी हूं। ओ किसी पुण्य की पुकार, किसी गुरमुख की अरदास, कालू मेरा जलवा फिर मेरा जीवन सब कालू दुनिया की पुकार राय जी ये भी क्या है। मैं अरदास कर नानक आवेगा नहीं नहीं जी, मैं अरदास की थी तो आवदा नानक भी वापस चला जाएगा आपको श्री वाले, क्योंकि मैं वो माया का कीड़ा हूं जिसने 20 रुपया बदले गुरु नानक के थोड़े मुखड़े से चंदेड़ा पाए 12 साल के विछोड़े में एक रोते पुत्र में भी छोड़े थे, आज मैं बेकारों को भी निर्भर कर पश्चाताप किया जाता है। हर जामणो वो हर जिना अनाज मैं लाल में सोने मुखड़े में चपेटा पड़े अज्ञान कर। एक दिन कह दिता नान जी पिताजी रेगे रह के काम नहीं चलेगा, कोई काम करो जो आगे लै भी रुपये लै जा, कोई सौदा कर, कोई बिजनेस कर। मैं तेरे नाम का भाई बाले को तोड़े बाले आ नाम कभी अनजान है, तू ख्याल रख अब तभी आगे की बुनियादी लिया भी तब बच्ची का रूल होने चाहिए। चले गए जंगली टके सर्वादा चुट गई अरे कह लगी बाले जी महाराज आप इतना महापुरुष है जो दर्शन करेंगे रब दे प्यारे रब दे प्यारे के दर्शन कीतिया रब चेतिया मैं आवे साल चित तेरिया भगता मन की कटिए मैल साल करेंगे खुश। बाले ने कहा महाराज आप जेड़े काम आए हो करिए सानू की दौड़े, क्योंकि बाले को पता भी है सारा अरबों का प्यार करना कितने इसी का समाधि लगा के बैठा। अरे कह लगे बाले महापुरुष के दर्शन पाठा हज चंदा महाराज आए इन्हों का जरा मन सी बड़ी वडेरी उम्र का चिंता अभी मगर करता एडा वाला लिटा का उसे जुड़ा किया हो सबा ने आके आदेश दिता सरकार नाल दिखाया दुनिया दाता देने वाला दुनिया का राजक मेरा धन गुरु नानक अगर मैं प्यार नाल पूछा महाराज सुनाओ भोजन छके अंकुश जिस तरह मां प्यार जाके पुत्र नु कहती है क्यों पुत्र प्रशादा छक लिया ये तो छक लिया तो मां पहले रख जा ये नहीं छकिया था तो सच्चा पिता आज कुछ के मंत्र किया महाराज कितने दिनों का पूछ ले लो एक दिन का दो दिन का तीन दिन का इन्हें क्या 5 दिन हो गए प्रशाद जी सब का प्याला पी के बैठे हल कहने लगे बाले जी महाराज पिताजी ने की किया सी पिता ने किया सी खड़ा सौदा करेगा सच्चा सौदा करेगा जिन्हें नाम है हजूर कह लगे बाले इस तो बड़ा सच्चा सौदा हो कोई नाम वाला कोई सौदा नहीं तो की करिए 20 रुपया का सीधा ले आके भुखे साधु वालों को भोजन बाले महापुरुष में मोह जिसरे में अन जाएगा रब खुश हो जाएगा। गुरु नानक आके सुन भाई बाला
ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੈ ਲਾਭਵੰਦ ਅਬ ਕਰੀਏ ਸਭ ਕੱਟ ਤੇਰੀ ਕਰ। ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਜੀ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਬਿਆ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਝੂੜ ਕਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਪਤਾ ਨੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਠਿਆ ਰਹਿ ਨੀ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਠੰਡ ਮਾਰ ਦੇ ਗਏ ਇਹਨੇ ਲੰਬੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਨਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕਾ ਉਹਦੇ ਜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਬੜੀ

कौन सी आज मेरे पिताजी ने वीरवास से कुछ नहीं किया पर जिसने अग्रियों के सकिया की सकिया नरंकारी वीर ने सोने मुखरे से नील पहन उपा मार के रोटी कह लगी पिताजी मेरे वीर नाम है कभी वीर नाम है मैं देखी के भी है

हमारी जेबा एक रुपया हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपे आणा हर तुम बड अगम अथाह।

मेरी मत थोड़ी मेरी मत थोड़ी हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी मत थोड़ी तू समझ वड़ा वड्डी हो।

बड़ी हूँ बता अबार तेरा मर्तबा, बड़ी हूँ बता अबार तेरा मर्तबा। निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सुचो सूचा सुचो सूचा, सुचो सूचा सुचो सूचा, अंत न अंता सदा दे अंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रब ते उठान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रब ते उठान, तेरो थान तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भक्त सोहे दरबारे, तेरा थान सुहावा तेरा थान सुहावा, भरत सुहावे ताल सुहावा विच अमृत जल छाया, तेरा थान सुहावा हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम, हर मंदिर साजिया निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, हमें अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले न कोई, जिस पापी को मिले न कोई, शरण आवे।

0: जन नानक को हर बख्श ले हो, जन नानक को हर बख्श ले हो।
1: हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम मत अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा।
0: जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला
1: हर कृपा कर सुन बेनती हर कृपा।

अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूढ़ नहीं पायो, पिन पिन सब हो कर जाना, एक रूप जिन हो पहचाना, जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, तिन समझे सिद्ध हाथ ना नानक अंगद को बप धरा, धर्म प्रचुर इह जग मूं करा, अमरदास पुन नाम कहायो, जन दीपक ते दीप जगायो, जग वरदान सवा वो आवा, रामदास तम गुरु दिजे पूर्व देवड़ा, इसदी वस्त किसे घर आवे, बैठा सोधी पादशाह, रामदास सतगुरु। जग को मन ध्यान धरे फिरत सकल जग, कबहू को पावे आत्म प्रकाश को, वेद बाणी सहत ब्रंच जस गावे जग को, शिव मन कहना तजात कबिलाश को, जाको जोगी जती सिद्ध साधक अनेक तप, जटाजूट पेख किए फिर उदास को, सो तिन सतगुर सुख भाए।

गुरु साजी वाजी सात सिंह जीओ राग श्री राग तुहाडी सेवा विच पढ़न दी सेवा कर रहे हैं। श्री राग दा जो चलन है वो दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों असीं ऋषभ कहने आ, सा तो बाद दूसरा स्वर रे है, उसनों ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान सुर है। और पंचम जिसनों पा कहने आ, सारे गामा पा, पंचमा सुर जो है वो इसका वजीर सुर है। इन्हां दोनों सुरां दे सुमेल दे नाल श्री राग दा जो स्वरूप कायम हुंदा है, जिस तरह

जो पड़ताल है जिसनू पड़ताल गुरु मातंत्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नू बदल के गायन करना। जिवें हुण पहला जो रहाओ है वह ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इसनू असी दीप चंदी कहने हैं, 1400 मात्र का ताल है, ताल बदल गया है, इसनू पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लाओ।

श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धर्म महत दिवस रात को दाई दया खेले गर्मी आपो अपनी सारे जपो जिन्नी नाम मशक्कत नानक।

आज गुरिए नमः जुगाद गुरिए सतगुरु बापे फिटके से फिटे गुरु बापे फिटके से फिटे गुरु अंगद की ते कुआरे गुरु तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के ना विचारे गुर चौथी पीढ़ी टिकिया गुर चौथी पीढ़ी टिकिया जिन निंदक दुष्ट सब तारिया जहान निंदक दुष्ट सब तारे तारिया जहान लहया अभिमान।

हमारी जेहबा एक टुकड़ा हो हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपे आणिया हर तुम बट अगम अथाह।

हमारी जेबा एक प्रभु जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कमन गुण कही है तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कमन गुण कही है जेबा एक तू समरथ बजा मेरी मत थोरी मेरी मत थोरी हम अज्ञान अल्प मत थोरी तू समरथ बड़ा वड्डी हूं बड़ा।

0: Four to you, sir.
1: गुरु राष्ट्र गुरबाणी नाला आत्म देने सगल वास्तु ज्ञान का सर्व ठाकुर गाइए आत्म सर्वी पावन नाम के चरण बचे मेरे जीव सानुकूली कर क्योंकि जीव का प्यार है ना कहीं प्यार है

आज हम विकसित कर रहे हैं तो अधिक करना भी मैं भी दूर में तो चरण भी कर जो गुरु जो है तो फिर भी कंस्ट्रेट जो गुरु

तेरी रहमत तेरी बख्शिश तेरा कितनी जरूरी है मेरा जीवन जो कुछ है तो तेरा कदे

की कृपा मोहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया दी लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी। वो कवि भी सी, 52 कविया विचो। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो। महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए। कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो।

उदत जाति जिनसी रंगी उदत जी जहां उदत नेकियां उदत बदियां उदत मान अवमान उदत पौन पाई बैसंतर।